0: तारे
1: आते हो फिर आते
0: क्या फेल है बना फिलहाल वो
1: तेरा दे बात आते बात है तो वो सर आते ना दे बात सब वो सल्ला बात है ना वो
0: खत्म बना लो बाहर पटला को किया नहीं ना।